जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

जय हिंद। सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये स्पेशल कार्यक्रम है। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे पुरखों की, यानी हमारे पितरों की। दोस्तों, 16 दिन के ये स्पेशल जो दिन होते हैं, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा होती है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यानी पितृ पक्ष को मनाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम भी ये बनते हैं। क्या होते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे।

पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्चिता शिवा अर्धचंद्रधरी देवी गदा मुदगर धारिणी सावित्री त्रिप्रदा शुद्धा सगोराग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोहा ब्रह्म रूपा हरि प्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति

चंड दर्प हरि देवी शुंभासुर निवर्हिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्री च रक्त बीज विनाशिनी धूम्राश्च दैत्र हंत्री च भंडासुर विनाशिनी रेण पुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्रपुज्या च गृहमाता गुणेश्वरी वज्रपाचधरा देवी जीवामुदगरधारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी अष्टोत्तर शतनामना बगलाया तुय

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है सुप्रभातम। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पितृ पक्षों के बारे में, यानी कि श्राद्ध पक्ष के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में श्राद्ध को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य से देखा जाता है। शास्त्रीय मान्यताओं में हम इसे पितृ ऋण से मुक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम भी मानते हैं। जीव को उसके कर्मों के आधार पर सुख दुख और अनेक योनियों की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग और पाप कर्मों का फल नरक के रूप में मिलता है। स्वर्ग नरक के भोग के बाद जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। इसी कारण शास्त्रों में पुत्र पौत्र आदि के लिए दिवंगत माता पिता और अपने पूर्वजों के निमित्त होकर श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों के अनुसार कर्म करने का विधान बताया गया है, ताकि उन्हें परलोक यानी इस मृत्यु लोक के दूसरे लोक में जब वो मर जाते हैं या देह त्याग देते हैं, इस संसार को त्याग देते हैं, तो विधान बताया गया है ताकि उन्हें परलोक में या अन्य योनियों में भी सुख प्राप्त हो सके। सनातन धर्म में श्राद्ध को पितृ ऋण से मुक्ति पाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। भारतीय धर्मशास्त्रों में श्राद्ध ना करने से होने वाले कष्टों का भी उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद जीव स्थूल शरीर छोड़कर, यानी ये जो हमारा शरीर होता है, इसे छोड़कर अपनी आगे की यात्रा करता है और इस यात्रा में उसके लिए पाथे यानी अन्न जल की आवश्यकता होती है। और ऐसा माना जाता है कि परिजन श्राद्ध और पिंडदान के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से जो अन्न जल अर्पित करते हैं, वही इस यात्रा में इन दिवंगत आत्माओं को मिलता है, प्राप्त होता है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

प्रणाम। ओम अस्य श्री लक्ष्मी नृसिंह कवचस्य है ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद है क्षौम बीजम ईम शक्ति रोम कीलकम।

भूत प्रेत पिशाच शाकने डाकने यंत्र मंत्र अद्य अनेक दोष निवारणार्थम जपे विनियोग है।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं पितृपक्षों के बारे में। श्राद्ध चल रहे हैं, हर घर में हर परिवारों में श्राद्ध जरूर पूजे जाते हैं, आप भी करते होंगे। सबसे पहले आसान भाषा में हम समझ लेते हैं कि श्राद्ध होते क्या है। देखिए, गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है तो मरने के उपरांत, देह त्यागने के उपरांत जो एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, उसे पूरा करने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें उस वैकुंठ की यात्रा पर कि हमको कौन सा लोक मिलेगा, मृत्यु के लोक में बनेंगे, प्रेत बनेंगे, पितर बनेंगे, भूत बनेंगे, ऐसे गरुड़ पुराण में बहुत सी बातें हमें पता चलती हैं। तो परिवार की ये जिम्मेदारी होती है कि न सिर्फ पिंडदान हो बल्कि अच्छी तरह से पूरे क्रियाकर्म को निभाते हुए श्राद्ध भी ठीक से मनाए जाने चाहिए। हर साल लगभग 16 दिनों तक ये स्पेशल दिन आते हैं जब हम अपने पितरों को पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस संसार में नहीं है, वो वापस आते हैं अपने परिवार को देखने के लिए, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और उनको भोग लगाने के लिए, जैसे हम कोए को भोग लगाते हैं, छत पे डालते हैं ना खाना, कुत्ते को, गाय को या गरीबों को, है ना, ये सब जो खिलाते हैं ये हम अपने पितरों के निमित्त होकर तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं या भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है जब हमारे पूर्वज वापस आकर यहां हमारे परिवारों को, बच्चों को अपने देखते हैं तो उनको हंसता खेलता देखकर और उनको याद करते हुए देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है और वो ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं और यही है श्राद्ध का असली महत्व।

पितृपक्ष चल रहे हैं। मैं हूं वास्तु कृष्णा, सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों, पितृ यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्हें हमें पूजना ही चाहिए। क्यों पूजना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार जो हम वंशज होते हैं ना, जो हमारे पूर्वज हैं, हम तो बच्चे हैं, वो थे, इसीलिए हमारा आज अस्तित्व है। हमारे होने से पहले न जाने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, किस तरह से अपने परिवार को लेकर वो आगे बढ़े, उन्होंने क्या क्या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए किया। कोई अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गया तो किसी ने अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से जिया, लेकिन वो संसार को छोड़कर अब चले गए हैं। अब वो चले गए हैं तो गरुड़ पुराण हमें ये समझाती है कि हमें अपने पूर्वजों का तर्पण करने चाहिए या पिंडदान करना चाहिए, उनके नाम से भोग लगाना चाहिए, कुत्ते को, कोए को, गाय को या गरीबों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। गरुड़ पुराण कहती है कि जब भी कोई दिवंगत आत्मा गुजर जाता है तो उसके बच्चों को पिंडदान जरूर करना चाहिए। अगर किसी के बच्चे नहीं है तो परिवार में, खानदान में कोई ना कोई जरूर होगा, तो पिंडदान करना चाहिए, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है या कह सकते हैं उनको शक्ति मिलती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि पितृ जो है बिगड़ गए हैं या पितृ दोष हो गया है, तो बेसिकली पितृ दोष कोई ऐसी चीज नहीं कि आपके जो पूर्वज या आपके पितृ हैं वो आपको कोई दोष दे रहे हैं या वो आपको परेशान करना चाहते हैं। इसका सही मायनों में अर्थ ये है कि अब वो कमजोर पड़ गए हैं या उनके पास शक्ति नहीं है। तो जब हम भगवान से पूजा करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे पूर्वजों को ये भोग हम जो चढ़ा रहे हैं उनको दे दीजिए, या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गायत्री पूजन करते हैं, ना है ना, सुना है ना आपने कि 1,25,000 गायत्री होती है, या हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो भी करते हैं, ऐसे करने से हमारे पूर्वजों को शक्ति मिलती है, और जब उनको शक्ति मिलती है तो वो ब्लेसिंग्स जो होती है वापस हम ही को देते हैं।

क्या है पिंडदान की परंपरा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं वास्तु कृष्णा और आपका स्वागत करता हूं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। दोस्तों, पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान की परंपरा क्या है? मरनो उपरांत पिंडदान की भी एक निर्धारित परंपरा बताई जाती है। इसमें शव यात्रा के दौरान 6 पिंड देने का विधान मिलता है। अगर आप किसी शव यात्रा में किसी के मरणोपरांत गए होंगे तो आपने देखा ही होगा, वो 6 पिंड होते हैं जो साथ में रखकर अलग अलग स्थानों पर रखकर वापस रखे जाते हैं, है ना, और अंतिम संस्कार के समय पर भी रखा जाता है, वो पिंड होते हैं। इसका उद्देश्य भूमि के अधिष्ठात्र देवताओं को प्रसन्नता और भूत पिशाचों से होने वाली बाधाओं का निवारण करने के लिए इस काम को किया जाता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको जरूर इस बारे में ज्यादा बता सकते हैं। इसके बाद दश गात्र में दिए जाने वाले 10 पिंडों के माध्यम से जीव को अतिवाहिक यानी सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। जब हमारा ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। इसके आगे पितृपक्ष में किए जाने वाले पिंडदान और श्राद्ध के माध्यम से अन्न जल अर्पित करने की परंपरा है। यदि पुत्र पौत्र या अन्य परिजन श्राद्ध आदि कर्म ना करें तो मृत जीव को भूख प्यास सहित अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जो बच्चे और जो लोग जो परिवार अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनको ठीक तरीके से पूजते हैं या उनका पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके नाम से किसी गरीब को, भूखे को, गाय को, कुत्ते को, कोए को भोजन कराते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स वापस आप ही को मिलती है। इसका पूरा उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में देखने के लिए मिलता है।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पितृ पक्ष में हमको याद रखनी चाहिए, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि श्राद्ध कर्म में बर्तनों का विशेष महत्व दिया गया है, बताया गया है। देखिए, अगर आपके पास बजट है या आपके पास है तो सोने चांदी और कांसे और तांबे के पात्र या बर्तन सबसे उत्तम माने गए हैं। आप इस प्रकार के बर्तनों में ही जो है अपने श्राद्ध का जो भोजन है या जो पूजन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका इनके लिए बजट है या आपके पास ये अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऐसे में आप लकड़ी से बने बर्तन, पत्तल या दोने फिर उनका इस्तेमाल करें। केले के पत्ते पर बिल्कुल भी श्राद्ध निषिद्ध बताया गया, कभी भी आपको केले के पत्तों पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कोई अगर पुराने समय से मान्यता चली आ रही है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तर्पण में मिट्टी के बर्तनों का भी जो इस्तेमाल है पूरी तरह से वर्जित बताया जाता है। तो ऐसे में सबसे सिंपल और आसान तरीका है, लोहे के या इस तरह के जो बर्तन होते हैं उनका कभी इस्तेमाल ना करें। या तो लकड़ी के बने या दोने होने चाहिए, उनका इस्तेमाल आपको करना है। लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा किन चीजों का यूज करना है और किन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। श्राद्ध में पका हुआ या बिना पका हुआ अन्न अर्पित करके पितरों को तृप्त करने की परंपरा है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या सामान हो सकता है? गाय का दूध, उससे बनी हुई वस्तुएं, जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, आम, बेल, अनार, आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, बेर, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। वही याद रखिए, एक सबसे जो जरूरी बात है, कुछ अब ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पिंडदान में यानी कि इस वक्त श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं करनी है। उड़द होती है, मसूर, अरहर, गाजर, कई बार लोग गाजर का हलवा या गाजर से बनी चीज या अरहर की दाल बनी है घर में उसी से श्राद्ध भूज देते हैं। तो उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी गोल वाला जो होता है, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, उसको मृत्यु के समय पर इस्तेमाल किया जाता है। चना, मांस और अंडे इत्यादि का जो यूज है बिल्कुल वर्जित होता है। यह आपको श्राद्ध के समय पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। उसके बाद ब्राह्मण भोज की बात आपने कई बार सुनी होगी। अगर आपका बजट होता है तो आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। पर शास्त्रों में साफ साफ लिखा है ब्राह्मण भोज उसको कराना चाहिए, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो पात्र है अपात्र ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन पे आमंत्रित नहीं करना चाहिए। पात्र है, भूखा है, गरीब है, उसको आप करा सकते हैं। इसके अलावा तर्पण सभी पितरों को तृप्त करता है और ब्राह्मण भोज एक पितर को तृप्त करता है। इसीलिए पिंड दान के साथ साथ आप तर्पण पर भी ध्यान दीजिए। पीपल को और कौवे को प्रतीक माना जाता है पितरों का। मान्यता है कि अगर आप पीपल के नीचे दिया जलाते हैं या कोई को भोजन कराते हैं तो पितरों को तर्पण प्राप्त होता है।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम और मैं वास्तु कृष्णा हूँ। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं, आपने भी अपने घर में अपने पितरों को जरूर पूजा होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमको नहीं पता होता कि आज किसका श्राद्ध है, तो हम ऐसे एक जनरली सबको पूछ देते हैं कि आज जिन भी हमारे पूर्वजों का श्राद्ध है आकर अपना भोग स्वीकार करें। और हम भगवान से ये विनती करते हैं कि हमारे जो भी पितर हैं वो इस वक्त जहां भी है, अगर वो अपने लिए कुछ विनती पूजा नहीं कर पाते हैं, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को आशीर्वाद दीजिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। और हम पिंडदान इत्यादि करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, गायत्री पूजन भी हम करते हैं। आप कोई भी हो, कहीं भी हो, अपने पितरों को हमें जरूर पूजना चाहिए। पितरों को पूजने का अर्थ होता है कि हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए, पितर जो होते हैं ये आपको आपकी कुंडली में देखने के लिए मिल जाएगा। और पितरों का स्थान हमारे घर में भी होता है। वैसे अक्सर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मेरठ में आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पितरों का स्थान होता है वो खेत पर, घेर में या घर से दूसरी जगहों पर बनाकर रखते हैं, जहां पर हम उनको पूजते हैं या उनके नाम का भोग वगैरह लगाते हैं। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम सभी के घरों में एक नियमित स्थान होता है, एक जगह होती है जो हमारे पितरों की ही होती है। अगर वहां पर कोई दोष प्रकट हो जाता है या कोई समस्या होने पर हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है।
1: राधे राधे।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा

0: प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहां किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं

तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रायोजक है, प्रस्तुतकर्ता है स्मार्ट एनजीओ, जिनके साथ मिलकर हम लंबे समय से आपको जागरूक कर रहे हैं और इस सीरीज का नाम है सेहत सही लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने आपको कई बीमारियों के प्रति जागरूक किया है। पिछले कई कार्यक्रम में हमने आपको टीबी नामक रोग के बारे में भी बताया है। टीबी एक जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन अब इसका पूरी तरह से इलाज संभव है, ये भी हमने आपको बताया। दोस्तों, पिछले कई कार्यक्रम में हमने टीबी के बारे में विस्तार से बात की है। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवाई की जो प्रतिरोधी यानी कि एमडीआर टीबी का भी इलाज अब पूरी तरह से उपलब्ध है। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज तो शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर बाहर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि इलाज को बीच में कभी भी रोकना नहीं चाहिए। दवाओं के संभावित रिएक्शन की अगर दवा से कोई परेशानी हो रही है तो निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद के लिए तुरंत तैयार रहती हैं।

0: की प्रस्तुति।
1: सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे ही टीबी की दवा शुरू होती है, कुछ ही महीने में, लगभग 1 से 1.5 महीने में मरीज को खांसी पूरी तरह से बंद हो जाती है, बलगम आने में भी कमी हो जाती है, बुखार आना भी बंद हो जाता है। ऐसे में मरीज को लगता है कि अब वो ठीक हो गया है, तो 1 से 2 महीने के अंतराल पर ही कई बार मरीज दवाइयां बंद कर देते हैं, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी के सलाह या मशवरा के खुद से ही दवाई बंद करके बैठ जाते हैं। और यहीं पर होती है सबसे बड़ी एक ऐसी गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। दोस्तों, बिना एक्सपर्ट की सलाह के तो दवा बंद ही नहीं करनी चाहिए। और रही बात टीबी की जांच की और टीबी की दवाइयों की, तो पूरा कोर्स ही करना चाहिए जो तकरीबन 9 महीने तक लगातार चलता है। जो टीबी से संबंधित अधिकारी, डॉक्टर या निक्षय से संबंधित डॉक्टर्स या टीम होती है, उनके संपर्क में आपको लगातार बने रहना चाहिए। उनके जानकारी के बिना कभी भी दवा रोकना नहीं चाहिए।

0: सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर यह खास प्रस्तुति, जिसके हमारे प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। टीबी की जानकारी के बारे में आज हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, टीबी एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है, लेकिन इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया, दवा लंबे समय तक यानी कि पूरा कोर्स करना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी मर्जी से दवा बंद कर देते हैं, जैसे ही महीने दो महीने में उनको आराम लगना शुरू हो जाता है। तो पिछले कई कार्यक्रमों के बाद, जैसा कि हम यहां पर चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों का हमारे पास फोन आता है, संदेश भी आता है। अधिकांश लोगों से एक ही बात हुई और हमें पता चला कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक, महीनों तक दवा खाना, लगातार खाते रहना आसान नहीं होता। और दोस्तों, सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरा इलाज करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आज की जो हमारी ये चर्चा है, इसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि आपको टीबी का इलाज शुरू करा देना चाहिए। जिन लोगों ने टीबी का इलाज शुरू करवा दिया और किसी भी वजह से उसको बीच में रोक दिया, तो अपनी जान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली। एक तो आपको टीबी हो गई है, और टीबी का इलाज अगर आपने शुरू करा दिया दवा बीच में रोकने के बाद, टीबी और भी ज्यादा भयंकर हो सकती है, बाद में मरीजों को ज्यादा समस्या हो सकती है। तो सभी श्रोताओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कभी अगर आपने कोई मरीज ऐसा देखा जिसको टीबी हुई और उसने दवाई बीच में रोक दी, चाहे किसी भी परेशानी से, मान लीजिए उसको दवा लेने में समस्या हो रही है, कोई रिएक्शन उसको नजर आ रहा है, या उसको आराम लग गया है, या वो काम पर किसी दूसरी जगह, दूसरे शहर में लौट गया है और वापस दवा लेने अपने गांव में या कस्बे में नहीं आ सकता, ऐसे मामलों में भी लोग दवाइयां बंद कर देते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हो तो सचेत होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो अब से कुछ साल पहले हुई। पास के ही एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था, रवि। उसको लगता था कि उसको फीवर रहता है, बुखार रहता है, वजन कम हो रहा था, खांसी लंबे टाइम से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला कि उसको टीबी है। परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख वापस लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन 1.5 महीने के बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हो गई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते या दाने जैसे दिखने लगे, उसे मतली शुरू होने लगी, कभी कभी उल्टी भी शुरू होती। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी कि दवा बंद कर दो, दवा से रिएक्शन हो गया है, दवा नुकसान दे रही है। लेकिन संयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारा ये कार्यक्रम सुना, सेहत सही लाभ कही, और एक पुराना एपिसोड था जिसमें हम बता रहे थे कि दवाइयां नहीं रोकनी चाहिए, जिसमें ये कहा गया, समझाया गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्यकर्मी या सरकारी डॉक्टर को जाकर बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों, हमारे आसपास के क्षेत्रों में सब लोग अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। कोई बीमारी हुई, बुखार हुआ, सरदर्द हुआ या कुछ भी समस्या हुई, खुद से ही जाकर मेडिकल स्टोर से कोई दवा मांग लेते हैं। तो हमारे यहां पर यह चलन बहुत बड़ा है कि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले ही दिन बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए, कुछ अतिरिक्त उपचार भी दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रित हो गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए, अगर उसके माता पिता ने डर कर दवा बंद कर दी होती तो बीमारी और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा में नहीं है, बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको कभी भी टीबी की दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी। अगर कोई समस्या नजर आ रही है तो जाकर उन डॉक्टरों से, सरकारी टीम के पास आपको पहुंचना चाहिए, निक्षय टीम जो होती है, और बताइए अपनी परेशानी। यकीन मानिए, आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। अब एक मरीज को क्या चाहिए? समय पर दवा, अच्छा खानपान, देखभाल, समझाने वाले कुछ लोग और बीमारी से छुटकारा। और ये सब करने में सरकार एक टीबी के मरीज की पूरी तरह से मदद कर रही है। खाते में पैसे भी आते हैं, निक्षय पोर्टली के माध्यम से खाने पीने का सामान भी आता है। सरकार आपको पैसा भी दे रही है, खाने का सामान भी मुहैया करवा रही है, पर जांच भी करवा रही है। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि टीबी को पूरी तरह से हराना है दोस्तों।
1: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। टीबी के बारे में हम यहाँ पर बहुत देर से बात कर रहे हैं। टीबी का इलाज कितना ज्यादा जरूरी है, कितना आसान है, सुगम है। सरकार दवाई देती है, खाने पीने का सामान भी देती है, साथ ही साथ आपको उतने पैसे भी देती है कि आप कुछ प्रोटीन युक्त भोजन कर सकते हैं, है ना। निक्षय पोर्टली के माध्यम से आपको खाने पीने का सामान समय समय पर मुहैया भी कराया जाता है। मेरठ जिले में किस प्रकार से सरकार इस योजना को सुनियोजित तरीके से आपके लिए मुहैया करा रही है, आपकी मदद कर रही है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं टीबी रोग विभाग के साथ। आइए बात करते हैं।
1: सेहत

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
1: देती
0: है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: सर मैंने सुना कि 6 महीने तक या 9 महीने तक दो तरह से चलता, कैसे इलाज चलता है इसका?
1: वो पहले सिस्टम था जिसमें जो कोई नया रोगी आता था उसका इलाज 6 महीने चलता था। कुछ प्रतिशत लोगों में ये बीमारी जो है ना कुछ समय बाद उभर जाती है
0: जी।
1: तो उसको हम बोलते हैं कि रीट्रीटमेंट, यानी कि एक बार ट्रीटमेंट लेने वाला व्यक्ति अगर दोबारा ट्रीटमेंट पे आता है उसको रीट्रीटमेंट बोलते हैं
0: जी।
1: तब पहले नियम था कि उस रोगी को 9 महीने दवा खिलाई जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं है, दवाइयां बहुत इम्प्रूव्ड हो गई हैं। अब किसी ने व्यक्ति ने पहली बार दवा खाई या दूसरी बार दवा खाई, इलाज 6 महीने ही चलता है, अब 9 महीने का सिस्टम

0: बार किसी व्यक्ति का टीबी का इलाज सरकारी आप लोगों की देखरेख में इलाज हो गया तो क्या फिर भविष्य में उसको दोबारा टीबी हो सकती है या नहीं?
1: संभावना है, उसको कोई लापरवाही रखेगा, अगर अपने खान पीन में ध्यान नहीं रखेगा, अपनी इम्यूनिटी को ठीक नहीं रखेगा, तो चूंकि उस बीमारी ने उसका घर देख लिया, आप ऐसे समझिए, मैं देशी भाषा में समझाता हूँ, उसके फेफड़ों पे कुछ इम्पैक्ट डाला, उसके थोड़े बहुत फेफड़े भी इस वजह से कमजोर हुए, तो 2-4% व्यक्तियों में ये संभावना है कि वो बीमारी उनको दोबारा से अपने चपेट में ले।
0: अब सर ये बताएं कि अगर किसी घर में कोई टीबी का मरीज ना चाहते हुए भी हो जाता है तो उनको परहेज किन किन चीजों के रखने, खाने पीने का भी बताएं, और जैसा कि आपने बताया कि बर्तन अलग करा देते हैं, कपड़े वगैरह अलग होते हैं, छोटे बच्चों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, बताएं।
1: देखिए, अगर किसी भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति फेफड़ों के टीबी का रोगी पाया जाता है तो सबसे ज्यादा ध्यान उसको रखना है कि हमेशा मास्क लगा के, कपड़ा लगा के रखे, जब भी खांसे छींके थूके, ये बहुत जरूरी है। छोटे बच्चों से लिपटा चिपटी या प्यार करने की उन चीजों से बचे, वो खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, साथ रहने का कोई परहेज नहीं है, ध्यान रखे उसका कमरा हवादार हो, उसमें कोई रोशनदान हो, कोई एग्जॉस्ट फैन लगाओ, ताजी हवा का इस्तेमाल करे और जितना डिस्टेंस बना सके। वैसे तो जो औषधियां ये खाता है व्यक्ति, लगभग लगभग एक महीने के अंदर वो दवाएं उस रोग को जाके अंदर इतना निष्क्रिय कर देती हैं कि वो जो फैलने का डर था, वो फैलने का डर काफी हद तक कम हो जाता है।
0: अच्छा।
1: फिर भी ऐसा कोई परहेज नहीं है, लेकिन जितना डिस्टेंस आप रख सके खासतौर से छोटे बच्चों से, खांसते छींकते थूकते हमेशा अपना मुंह बंद रखें, अगर थूकना भी हो तो किसी जो राख के अंदर ऐसे कोई बर्तन बना के रखें और उसको किसी प्रॉपर जगह पर डिस्ट्रॉय करें, ये सावधानी बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। संभावना को देखते हुए कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, सरकार ने ऐसा भी औषधियां उपलब्ध करानी शुरू करी है कि अगर किसी भी परिवार में किसी व्यक्ति को फेफड़े की टीबी है तो उसके परिवार में 5 साल से छोटे बच्चे प्लस सभी बड़े एडल्ट जितने भी हैं सबको सरकार 6 महीने तक दवा खिलाती है अलग से।
0: अच्छा।
1: टीबी की प्रॉपर दवा नहीं होती, पूरा वो कोर्स नहीं होता, मगर वो बचाव का एक कोर्स होता है, बच्चे और बड़े सारा वो कोर्स करते हैं 6 महीने का।
0: अच्छा।
1: ताकि वो बैक्टीरिया उस बच्चों और बड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके।
0: अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिसको बीमारी हो गई है टीबी की वो तो दवाएं खाएगा, लेकिन पूरा परिवार भी थोड़ी कम डोज वाली दवाई तो खानी है उसको।
1: वो बचाव के लिए एक कोर्स है, वो टेक्निकल पार्ट है, उस पर यहाँ बताने से कोई लाभ नहीं है, मगर वो सभी उस घर के रोगी जितने भी स्वस्थ हैं, अब तो सरकार ने नियम बनाया कि परिवार के जितने भी लोग हैं सबकी जांच होगी।
0: अच्छा।
1: सब लोग आइए अपनी जांच कराइए, जांच में 2 बातें होंगी, या तो वो सब ठीक होंगे या उनमें से कोई 1 या 2 व्यक्ति को टीबी का रोग हो सकता है। तो जितने भी व्यक्ति टीबी के रोग ही निकलेंगे उन सबको तो टीबी की दवा चलेगी सेपरेटली, वो टीबी का मरीज है गया। लेकिन जितने भी व्यक्ति ऐसे होंगे बच्चों से लेकर बड़े तक जिनमें कोई रोग नहीं पाया गया टीबी का, उन सबको फिर टीबी से बचाव की दवाई चलाई जाएंगी पूरे 6 महीने तक।
0: 6 महीने तक।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति, फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 एफएम। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है। और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ। कई मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर महत्वपूर्ण, मतलब आप समझे, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है। मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार हैं पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले, इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाई आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Here we go, आरजे वंशी in the studio है। हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपके आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूँ आपके वाला प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सखी और संसार। और इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो एसोसिएटेड होती हैं आपकी सेहत से और कुछ ऐसी बातें जो माताओं बहनों से होती है, तो वहीं आपको अवगत कराती हूँ संसार में क्या चल रहा है या संसार में आज के दिन क्या हुआ था। इसी के साथ चलिए, इन सब बातों को तो हम करेंगे लेकिन फिलहाल गुड वाली मॉर्निंग, गुड वाली वाइब और गुड वाला फॉर्मूला ऑफ द डे आज का, वो क्या कहता है सुनते हैं साथ में। सफलता की शुरुआत किसी काम के बारे में केवल सोचने से नहीं बल्कि उस पर पहला कदम उठाने से होती है। सपने देखना तो आसान है लेकिन उन्हें सच करने की कला निरंतर प्रयास में छिपी है। यानी कि अक्सर हम अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देख तो लेते हैं और लक्ष्य भी तय कर लेते हैं, चाहे वो पढ़ाई में बेहतर करना हो, सेहत सुधारना हो, नया हुनर सीखना हो या करियर में आगे बढ़ना हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी रुकावट शुरुआत ना कर पाना या काम को कल पर टाल देना होती है। अगर आपके अंदर भी ये आदत है तो इसको जरूर छोड़ दीजिए और इसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर आपके अंदर ये आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि कल पर टाल देने वाली जो आदत होती है, इसको आप जरूर बदल डालिए। दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज भी तब तक बेकार हैं जब तक कि उन पर अमल न किया जाए, तो इसीलिए योजना बनाना महत्वपूर्ण है लेकिन उस योजना पर काम शुरू करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सही समय आएगा, जब सही साधन होंगे या जब वे पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तब शुरुआत करेंगे, लेकिन जनाब हकीकत ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं है, उसे सही बनाना पड़ता है। पहला कदम हमेशा अधूरा या कठिन लग सकता है लेकिन वो आपको मंजिल के करीब लेकर जाता है। जैसे एक ही दिन में पहाड़ नहीं खोदा जा सकता ना, बिल्कुल वैसे ही रेगुलर किया जाने वाला छोटा सा प्रयास, छोटी सी कोशिश आपकी, भले ही वो 10 मिनट की ही क्यों ना हो, लंबे समय में आपको बहुत बड़े परिणाम दे सकती है और इवन देती भी है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए और आज ही आप एक छोटा सा कदम उठाएं, जिस काम को आप लंबे समय से टाल रहे हैं उसका सबसे छोटा हिस्सा आज करने की ठान लें और उसे पूरा भी करें। और पहला कदम गलत भी हो सकता है आपका, भले ही वो गलत भी हो जाए तो वो आपको एक नया अनुभव देगा, नई सीख देगा, तो इसलिए उसे ना घबराएं। और आपकी सोचने की क्षमता जितनी बड़ी है ना, आपके काम करने की क्षमता उससे कहीं अधिक है, ये बात आप हमेशा याद रखें। फिलहाल इस मोटिवेशनल फॉर्मूला के साथ चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के दिन की और आज के इस प्रोग्राम की। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें आपसे करनी है।
2: रानी देख, राजा ये मटकी एक फटकी में तोड़ता है।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और इस प्रोग्राम में कुछ बातें मैं करती हूँ सेहत से रिलेटेड तो कुछ बातें होती हैं संसार की, वहीं बहुत सारी बातें मैं करती हूँ अपनी सखियों, माताओं, बहनों से। फिलहाल आपको लेकर चलूंगी फिर से एक बार आपके रसोई घर में और हम बनाएंगे कुछ टेस्टी सा और कुछ हेल्दी सा मिलकर के साथ में। तो जनाब, आज हम बनाने वाले है एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और बनाने में भी बहुत ही आसान है। नाम है इसका पालक पनीर भुर्जी। बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट होती है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी काफी पसंद है। और ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर होती है और इसे आप रोटी से खा सकते हैं या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, स्पून से भी, अकेले भी। ये अपने आप में काफी सफिशियंट रेसिपी होती है। इसी के साथ चलिए इसको बनाने के लिए क्या तैयारी शैयारी लगेंगी इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आयरन से भरपूर होती है और इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट हो जाता है पालक, क्योंकि उससे मिलता है हमें फाइबर और पनीर से मिलता है हमें भरपूर प्रोटीन। तो हमारे सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पालक और प्रोटीन। तो हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम हाथ से मैश किया हुआ, और पालक हमें चाहिए एक कप बारीक कटा हुआ, प्याज चाहिए हमें एक मध्यम बारीक कटी हुई, टमाटर एक मध्यम बारीक कटा हुआ, वहीं हरी मिर्च हमें चाहिए एक से दो जो कि बारीक कटी हुई हो। उसके बाद हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच, जीरा आपको चाहिए आधा छोटा चम्मच, और वहीं हमें चाहिए हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी उसको ले सकते हैं। गरम मसाला हमें चाहिए एक चौथाई छोटा चम्मच, तेल या घी आप लें एक बड़ा चम्मच, नमक लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरा धनिया आपको लेना है सजावट के लिए थोड़ा बारीक कटा हुआ। इसी के साथ इसकी क्या स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन बिफोर दैट चलिए एंजॉय करेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है मेरा 9639012111। सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में,
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से, और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
5: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
6: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम,
1: BA Honors हिंदी, BA Honors English, MA हिंदी, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर। अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
5: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ तो वहीं कुछ फरमाइशें भी आपकी पूरी करती हूँ और ढेर सारी बातें भी आपकी सुनती हूँ। लेकिन इसके लिए अगर आपको भी हमसे जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं नंबर से 9639012111 हमारा नंबर हो जाता है और जनाब पूरे 1 बजे तक आपके साथ बातें होने वाली है। लेकिन दैट आपको बता दूं कि हम ना आज कुक कर रहे हैं पालक पनीर भुर्जी, जिसकी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए पहले ही, लेकिन आप एक बार अगर चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम, पालक 1 कप बारीक कटा हुआ, प्याज 1 मीडियम बारीक कटी हुई, टमाटर 1 मीडियम बारीक कटी हुई, हरी मिर्च हमें चाहिए 1 से 2 जो की बारीक कटी हुई हो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच आप ले सकते हैं, वहीं जीरा आपको चाहिए 1/2 छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हमें चाहिए 1/2 छोटा चम्मच या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर ले, वहीं गरम मसाला 1/4 छोटा चम्मच, तेल या घी 1 बड़ा चम्मच और नमक भी एज पर योर टेस्ट। हरा धनिया चाहिए हमें सजावट के लिए बारीक कटा हुआ, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे इसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी पर बात करें तो हमें सबसे पहले चाहिए 1 कढ़ाई और उसमें डालना है हमें तेल या घी, आप उसको गर्म करें, गर्म होने पर इसमें जीरा डालें और उसको चटकने दें। इसके बाद अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करें, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भूने, यस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको रोस्ट करना है। वहीं इसके बाद आपको टमाटर इसमें ऐड करने हैं और इनके सॉफ्ट होने तक इसको कुक करना है। फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर आपको मसालों को पूरे 1 मिनट के लिए भून लेना है ताकि जो उनमें कच्चापन रहता है उसका टेस्ट ना आने पाए। वहीं अब कढ़ाई में बारीक कटा हुआ पालक डालें, इसे मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाएं, जब तक कि पालक का पानी सूख ना जाए और वो अच्छे से पक ना जाए तब तक आपको वेट करना है और उसको लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर ही उसको पकाते चले जाना है। फिलहाल हमें भी चले जाना है कहाँ, इस छोटे से ब्रेक पर, उसके बाद हम पूरी करेंगे रेसिपी अपनी और ढेर सारी बातें भी आपसे बाकी हैं अभी, तो कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
4: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम यानी के सेहत सखी और संसार प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं एक प्यारी सी और पौष्टिक रेसिपी के बारे में, जिसका नाम है पालक पनीर भुर्जी। इसके बारे में काफी हद तक हम बातें डिस्कस आपसे कर चुके हैं, लेकिन इसको आपको कैसे बनाना है, चलिए इस पर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको तड़का लगाना है। इसके लिए आपको चाहिए एक कढ़ाई, उसमें आप तेल डालें या घी डालें, कुछ आप ले सकते हैं। उसको गर्म होने दें और इसमें अब आप जीरा डालें और उसको चटकने दें। वहीं अब आपको इसमें ऐड करना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, और प्याज को आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे टमाटर और उनको सॉफ्ट होने तक का आपको वेट करना है। फिर उसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक, और उसको पूरे एक मिनट के लिए आपको भूनना है। वहीं अब कढ़ाई में आपको ऐड करना है बारीक कटा हुआ पालक और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक आपको पकाना है। जब तक कि पालक का पानी सूख ना जाए और वो अच्छे से पक ना जाए, आपको इसको पकाते जाना है। अब इसमें जब आपको लगे कि पालक पक गया है, इसके बाद इसमें मैश किया हुआ पनीर आप डालें और गरम मसाला डालें। सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दें, ताकि पनीर में मसालों का स्वाद रम जाए यानी आ जाए। इसी के साथ आपकी गर्मा गर्म और हेल्दी पालक पनीर भुर्जी तैयार है, और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालकर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। अब आपको बता देती हूँ कि आखिरकार ये सेहत के लिहाज से क्यों फायदेमंद है। क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है, यानी पनीर मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और पनीर में होता है हाई प्रोटीन, तो एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है इस रेसिपी का। वहीं बात करें पालक की, क्योंकि ये आयरन और विटामिन से भरपूर होता है, तो ये खून की कमी, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, उसको ये दूर करने के लिए काफी फायदेमंद होता है और ये आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है। वहीं ये रेसिपी वजन नियंत्रित रखने के लिए और ब्लड शुगर को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल है, यानी कि ये एक लो कार्ब रेसिपी है। वहीं चलिए आपको लेकर चलूंगे एक हाई मेंटेनेंस सॉन्ग की तरफ, यानी कि हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
2: बाजू

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ, क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मेरी आपसे बातें होती ही रहती हैं और मैं आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और मुझसे कहना है, कुछ और मुझसे शेयर करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर हो जाता है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारी सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर हमारे आजाद हिंद रेडियो से। बाकी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको जाना होगा सर्च करने के लिए आजाद हिंद रेडियो और बहुत ही आसानी से आपको हमारा अकाउंट मिल जाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही मेटा पर अगर आप आजाद हिंद रेडियो सर्च करते हैं तो आपको हमारा पेज जरूर मिलने वाला है। आप उससे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और हम तक अपनी बातें सीधे पहुंचाइए। और साथ ही साथ आप बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हमारी पहुंच से दूर, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी से दूर और आप तक हमारी रीच नहीं बन पा रही है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, और जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बताकर ही बहुत खुशी होती है कि मेरठ में ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है। और अभी तक ये इकलौता ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहें। तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है, तो आप इसको इंस्टॉल करें, हमसे जुड़ जाएं और अपनी बात सीधे हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो जरूर हमें लिख करके भेजिए, हम आपके नाम के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अपने किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ आर्ट को लेकर के। बाकी अभी तो इतना ही कहूंगी कि आप इतना प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल आपके प्यार को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर या

0: करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University Meerut. For more information contact 9759303022.
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
4: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
6: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, ढेर सारी बातें लेकर हाजिर हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल मैं करूँगी सखियों की सेहत के बारे में बात, क्योंकि संसार के बारे में तो मैं आपसे बातें करती ही रहती हूँ, लेकिन आज अभी हम बात करेंगे मेटरनल और चाइल्ड केयर के बारे में, यानी कि मातृत्व और शिशु देखभाल आप कैसे कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं, पर फिर भी उसको हम अपने रूटीन में शामिल नहीं कर पाते, तो कहाँ पर हम चूक रहे हैं, कहाँ पर हम चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, इसके बारे में आज आपसे ढेर सारी बातें करने वाली हूँ। वेल, आपको भी कुछ बात मुझ तक पहुँचानी है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के साथ साथ आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं, क्योंकि गर्भावस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आपको अपनी सेहत के साथ साथ शिशु की देखभाल के लिए भी कार्य करना होता है, तो ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ये एक माँ और बच्चे के जीवन मरण का विषय होती है, तो सही जानकारी के अभाव में साधारण सी छोटी सी लापरवाही गंभीर रूप ले लेती है अक्सर, तो इसीलिए ये लापरवाही गंभीर रूप न ले। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में होती है, तो उसको न्यूट्रिशन की कितनी जरूरत होती है और उसको किस तरीके से अपने पोषण पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको एक नियम बनाना होगा जिसको हम बोलते हैं प्लेट का नियम। तो जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनको केवल भोजन की मात्रा नहीं बल्कि भोजन की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए होती है। अब वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जरूरी चीज जो हो जाती है वो होती है महिलाओं के लिए उस अवस्था में प्रोटीन की, क्योंकि जो बच्चों के अंग होते हैं के निर्माण के लिए प्रोटीन बड़ा ही जरूरी होता है और इसका सोर्स

है आपके घर में मौजूद दाल। चना आप खा सकते हैं, अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, पनीर या सोयाबीन। आपको रेगुलर डाइट में ये चीजें शामिल कर लेनी चाहिए। वहीं आपको बताऊं कि इस स्टेज में आपको चाहिए होता है भरपूर कैल्शियम, जो कि हड्डियों के विकास के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो अगर कोई महिला गर्भवती है और वो ठीक तरीके से कैल्शियम नहीं लेती है तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो माँ की हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, माँ को बाद में बड़ी परेशानी होती है, उसके जोड़ों में दर्द रहने लगता है, हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब उसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप प्लेट का नियम जरूर अपनाएं और अपनी प्लेट में दूध, दही, छाछ, चूना, ये बहुत छोटा सा अंश आपको लेना है चूने का, चुटकी भर, ठीक। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, पर्याप्त मात्रा में रहता है, जो आपके लिए भी पर्याप्त रहता है, साथ ही साथ आपके शिशु के लिए भी पर्याप्त रहता है। तो अगर आप चाहती हैं कि बाद में आपको घुटनों के दर्द से होकर के ना गुजरना पड़े और जोड़ों के दर्द की समस्या आपके साथ ना हो, तो जब भी आपके घर में या आपके आसपास एक महिला आप गर्भवती देखते हैं तो आप उसको जरूर ये प्लेट के नियम समझाएं। और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, और कुछ और भी अहम और जरूरी बातें बताऊंगी जो हमारी माताओं को, जो हमारी बहनों को और हमारी महिलाओं को जरूर समझनी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए। फिलहाल ये गाना आपके लिए, विल बी राइट बैक टू यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद शुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
5: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम में हमने ढेर सारी बातें तो की ही, कुछ बातें आपकी थी तो कुछ बातें मेरी थी। वहीं चलिए अभी ना एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है और अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है या प्रशासन पर है, तो भूल जाइए, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि प्रदूषण है या कचरा प्रबंधन है या पेड़ पौधों की जो कटाई है, ऐसे कुछ इश्यूज जो सिर्फ सरकार के अंदर ही आते हैं या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सच बात ये है कि जब तक हर एक नागरिक इसे अपना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं मानेगा, तब तक बड़े पैमाने पर बदलाव संभव है ही नहीं। आपको परेशानी हो सकती है बढ़ते प्रदूषण से, परेशानी हो सकती है कि कचरा प्रबंधन नहीं है ठीक से, या फिर परेशानी हो सकती है कि पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आपको सचेत रहना होगा, आपको अवेयर रहना होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के दिखाना होगा, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको अपनाने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग आपको करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल में इतनी ज्यादा मशगूल हो चुकी है कि इसको पीछे छोड़ना या इसके बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप इसके लिए जरूर अपने आप कुछ स्टेप्स बढ़ाएं ताकि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो आपको देखकर इंस्पायर हों। बाकी पानी और बिजली की बचत करना, ये भी आप अपनी आदत में ला सकते हैं। जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं और एक एक बूंद की कीमत को समझें, और वहीं वृक्षारोपण जरूर करें। अपनी आने वाली पीढ़ी को साफ हवा और स्वच्छ पानी देने के लिए आप इस चीज को जरूर अपनी आदत में लाएं, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। तो याद रखें, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकार की या किसी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये जन जन की जिम्मेदारी है। इसमें सभी की भागीदारी लगेगी, तभी काम आसान हो पाएंगे और तभी हम इस चीज को अटेन कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अटेन तो करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट जरूर रहेगा आपका आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ये गाना सुनेंगे, फिर उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत, सखी और संसार, मैं बातें कर रही हूँ सखियों की सेहत के बारे में। और आज का जो हमारा विषय है वो है मेटरनल एंड चाइल्ड केयर। आप किस तरीके से माँ के साथ साथ शिशु की देखभाल कर सकते हैं, और इसी संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि गर्भावस्था में न्यूट्रिशन को मेंटेन करना बड़ा जरूरी हो जाता है और इसके लिए प्लेट का नियम बनाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अभी तक हमने बात की कि आपके शरीर को ऐसी कंडीशन में प्रोटीन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो आपको हर कोशिश ये करनी होगी कि इन दो चीजों की आपके शरीर में थोड़ी सी भी कमी ना आने पाए। आप अपनी डाइट को प्रॉपर रखें और अपनी प्लेट में सही मात्रा में दाल, चना, पनीर, सोयाबीन या अंडा अगर आप खाते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए आप जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं, इससे काफी फायदा होता है। वहीं आपको बताऊं कि ऐसी अवस्था में महिलाओं को चाहिए कि वो फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां लगातार लेती रहें। और आयरन की गोली को हमेशा आपको नींबू पानी या फिर सादे पानी के साथ लेना चाहिए। आप अगर ऐसा करती हैं कि चाय या दूध के साथ ले लेती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा अगर आप करती हैं तो आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और उसका खाना न खाना बराबर हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप आयरन की गोलियां खाती हैं तो हमेशा सादे पानी से आप उसको लेना प्रेफर करें, या फिर आप चाहे तो नींबू पानी से भी उसको ले सकती हैं। और क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है या फिर आपके घर के आसपास कोई गर्भवती महिला है, उसको भी आप जाकर के बता सकते हैं। आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी में ना कुछ खतरे के साइंस भी होते हैं, अगर आपको नजरअंदाज ना करें तो बड़ी से बड़ी घटना है या मैं कहूँ दुर्घटना है वो टाली जा सकती है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो आपको अगर अभी जो मैं आपको लक्षण बताने वाली हूँ ऐसा कुछ दिखे तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें या फिर अपने नजदीकी अस्पताल जरूर उन्हें एक बार चेकअप के लिए लेकर जाएं। जैसे कि हाथ पैर और चेहरों पर अचानक से सूजन आ जाना, ये एक हाई बीपी का साइन हो सकता है या फिर मैं कहूँ एक्लेम्सिया का ये संकेत हो सकता है।

तो इसीलिए इस चीज को श्योर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, या फिर उनसे अगर हो सके तो एक बार फोन से तो जरूर संपर्क करें। वहीं अगर आपके प्राइवेट पार्ट से खून या मवाद जैसा आ रहा है बाहर, तो उस केस में भी आप जरूर सतर्क हो जाइए, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। वहीं तेज सरदर्द अगर आपको होता है या आपको लगता है कि आपका विजन थोड़ा सा धुंधला हो रखा है, तो ऐसे में भी इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। बच्चे की हलचल को कम महसूस हो रही है, तो ऐसे में भी आप एक बार जरूर अपनी डॉक्टर साहब से बात करें। और अगर आपको ऐसी कंडीशन में तेज बुखार, तो उसको भी बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो ये पांच बड़े संकेत होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, नहीं तो बात बनने की बजाय बिगड़ भी सकती है। फिर से बता देती हूँ आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ और चेहरे पर अचानक से सूजन आ गई है, उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना है। वहीं प्राइवेट पार्ट से अगर कुछ एबनॉर्मल चीज डिस्चार्ज हो रही है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी है। तेज सरदर्द या धुंधला दिखाई देना, बच्चे की हलचल महसूस ना होना या कम महसूस होना, और तेज बुखार आना, ये पांच ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको डॉक्टर को अप्रोच करना ही चाहिए। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी। बट मीनवाइल एंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

Hi everyone, I am Kapil Ghori, the International Fashion Show Director. आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM. Nation first, always first. RJ वंशी के साथ.

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Patient First, Always First. और दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार प्रोग्राम मेरे यानी आरजी वंशी के साथ. और कुछ आज ऐसी आपसे बात कर रही हूँ जो हम अक्सर बात करने में हिचक जाते हैं और हमारे बच्चे भी शायद शाइनेस के चलते या शर्म के चलते ओपनली हमसे भी उस बारे में डिस्कस नहीं कर पाते हैं. आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एडोलसेंट हाइजीन के बारे में, जो कि आपको ये बताएगी कि आपको किशोरावस्था में किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है और अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना है. देखिए, ये जो एज होती है वो 10 से 19 वर्ष तक होती है लगभग, और ऐसे में शरीर में बहुत सारे हॉर्मोन्स जो है वो चेंज होते हैं, हॉर्मोनल चेंजेस होते रहते हैं. तो इस समय पर सही मार्गदर्शन अगर बच्चे को ना मिले, खासतौर पर अगर लड़कियों की बात करें, तो वो जीवन भर बीमारियों की शिकार हो सकती है. इसी के साथ चलिए आपको बता देती हूँ कि संक्रमण का जो चक्र होता है, जब एक किशोरी एक पैड को बड़े लंबे समय तक इस्तेमाल करती है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं जो आपके प्राइवेट पार्ट से आपके गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं. अब इससे क्या होता है, इससे होता है पीवीडी यानी के पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज. इसके चलते ये निचले पेट में लगातार दर्द का कारण बना देता है और काफी सारी किशोरियों को इस समस्या से जूझना पड़ता है और उन्हें लगता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है. तो इसीलिए जरूरी है कि आप स्वच्छता पर जरूर ध्यान दें और अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं. इसी के साथ जो RTI और UTI जैसी समस्याएं बच्चियों में देखने को मिली है, आप कह सकते हैं इसमें प्राइवेट पार्ट से कुछ अजीब सा डिस्क्रीट होना, खुजली महसूस होना, या आपके यूरिन में आपको जलन महसूस हो सकती है, तो ये चीजें शामिल होती हैं. ये सिम्टम्स होते हैं जो बाद में जाके प्रजनन मार्ग में संक्रमण के लिए भी जिम्मेदार माने जाते हैं. वहीं आपको बता दूं कि भविष्य का जोखिम भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कंटिन्यूएशन बेसिस पर संक्रमण होता रहता है और संक्रमण से जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे आगे चलकर जो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम लड़कियों में बन जाती है. तो आपको जरूरी है कि आप अपनी बच्चियों को ऐसी अवस्था में स्वच्छता की वैल्यू को जरूर समझाएं और उन्हें बताएं कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है. इसी के साथ ना बहुत सारे भ्रम हैं जो महावारी से जुड़े हुए हैं, आपको ये भी बताऊंगी, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा. ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM.

हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषि भुटानी और मैं हूँ बॉलीवुड एक्टर और आप लोग सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहां आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है

प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और फिलहाल हम बातें कर रहे हैं जो आपकी एडोलसेंट एज होती है उसमें काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़कियों को पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं और इसके चलते उन्हें काफी सारी दिक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और ये होता क्यों है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ जानकारियों के अभाव आपको लेकर, जिससे कि आप पीवीडी की चपेट में आ सकते हैं, जिससे आपके साथ आरटीआई या फिर यूटीआई की समस्या बन सकती है, या आपको भविष्य में भी फर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को हाइजीन का प्रॉपर मतलब बताएं और कहें उनसे कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं तो ठीक तरीके से पहले वॉशरूम को साफ करके ही उपयोग करें, और बाद में भी उपयोग करने के बाद भी उसको फ्लश जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारी ऐसे मिथक हैं, बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो हमारी सोसाइटी में बने हुए हैं महामारी से रिलेटेड। चलिए आज उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी पीरियड्स का खून होता है वो जहरीला होता है या बहुत ज्यादा गंदा होता है, अपवित्र होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट है वो ये है कि ये वही सामान्य खून होता है जो आपकी बॉडी के अंदर नसों में बहता है। ये गर्भाशय की अंदरूनी दीवार, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके टूटने से निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत अपवित्र होता है, गंदा होता है। तो ये एक मिथक बना हुआ है हमारी सोसाइटी में, और ये अंधविश्वास है जिसको हमें सही में पार करके जाना होगा। वहीं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान आप अचार छुएंगे तो वो खराब हो जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये इसलिए होता है, अचार में आपने देखा होगा आमतौर पर फंगस आ जाती है। वो आती कैसे है? हाथों की नमी से वो खराब होता है। महामारी से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप गीले हाथों से इंसान भी उसको छू लेगा तो जो अचार है वो पूरी तरीके से खराब होने की स्थिति में आ जाता है। उसको खराब करती है नमी, ना कि महामारी से इसका कोई संबंध है। वही बहुत लोगों का मानना है कि पीरियड्स में आपको नहाना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसे में जरूरी है कि साफ सफाई आप बिल्कुल मेंटेन करके रखें। तो अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपको, तो आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो शरीर में कुछ ऐठन आपको जो महसूस होती है या दर्द जो हो रखा होता है, वो उसमें थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सा आराम मिलता है, और आपको बहुत फ्रेश भी फील होता है, बहुत साफ साफ फील होता है। जब आप ऐसा फील करते हैं तो आधी जो परेशानी है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। आपका क्या कहना है इन बातों पर, आप मुझे जरूर कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या ऐसी बातों को आपके साथ साझा करना चाहिए, ताकि जो ये जानकारी है जिसके अभाव में हमारी किशोरियों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में ओपनली बात होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में उन मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं ये कहूंगी कि आप अपने घर में जरूर ऐसा पर्यावरण मेंटेन करके रखें कि बच्चा आपसे अपनी हर परेशानी के बारे में बात करने में हिचके ना। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

Hi everyone, I am Kapil Ghori, the International Fashion Show Director. आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM. Nation first, always first.

हाय एवरीवन, आई एम कपिल घोरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आरजे वंशी के साथ।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
4: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
3: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल, वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम में हमने ढेर सारी बातें तो की ही, कुछ बातें आपकी थी तो कुछ बातें मेरी थी। वहीं चलिए अभी ना एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है और अक्सर हम ये सोच बैठते हैं कि इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है या प्रशासन पर है, तो भूल जाइए, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि प्रदूषण है या कचरा प्रबंधन है या पेड़ पौधों की जो कटाई है, ऐसे कुछ इश्यूज जो सिर्फ सरकार के अंदर ही आते हैं या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि सच बात ये है कि जब तक हर एक नागरिक इसे अपना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं मानेगा, तब तक बड़े पैमाने पर बदलाव संभव है ही नहीं। आपको परेशानी हो सकती है बढ़ते प्रदूषण से, परेशानी हो सकती है कि कचरा प्रबंधन नहीं है ठीक से, या फिर परेशानी हो सकती है कि पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में आपको सचेत रहना होगा, आपको अवेयर रहना होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के दिखाना होगा, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको अपनाने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग आपको करना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको बिल्कुल त्याग देना है। चूंकि ये हमारी लाइफस्टाइल में इतनी ज्यादा मशगूल हो चुकी है कि इसको पीछे छोड़ना या इसके बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप इसके लिए जरूर अपने आप कुछ स्टेप्स बढ़ाएं ताकि जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो आपको देखकर इंस्पायर हों। बाकी पानी और बिजली की बचत करना, ये भी आप अपनी आदत में ला सकते हैं। जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं और एक एक बूंद की कीमत को समझें, और वहीं वृक्षारोपण जरूर करें। अपनी आने वाली पीढ़ी को साफ हवा और स्वच्छ पानी देने के लिए आप इस चीज को जरूर अपनी आदत में लाएं, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य भी हो जाता है। तो याद रखें, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी सरकार की या किसी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये जन जन की जिम्मेदारी है। इसमें सभी की भागीदारी लगेगी, तभी काम आसान हो पाएंगे और तभी हम इस चीज को अटेन कर पाएंगे। फिलहाल चलिए अटेन तो करते रहेंगे, एंटरटेनमेंट जरूर रहेगा आपका आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ये गाना सुनेंगे, फिर उसके बाद आई विल बी बैक टू यू।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि यह कार्यक्रम आधारित है राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर, जिसके लेखक हैं सुभारती विश्वविद्यालय एवं सुभारती ग्रुप के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। डॉक्टर अतुल कृष्ण किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, संभवतः यह किसी एक व्यक्ति का नाम हो भी नहीं सकता। डॉक्टर अतुल सरीखे किसी व्यक्तित्व का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक, विस्तृत, भव्य और विशाल हो, उसे किसी परिभाषा के दायरे में रखकर परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी मूल रूप से शल्य चिकित्सक हैं, लेकिन ये उनका एकमात्र परिचय नहीं। वे जितने प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सक रहे हैं, उतने ही कर्मशील एवं ध्येयनिष्ठ सामाजिक शल्य चिकित्सक भी हैं। सामाजिक विकृतियों को दूर करने के लिए वे वैचारिक एवं व्यवहारिक प्रकल्पों का नेतृत्व भी करते हैं, साथ ही उसमें अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ सहभागिता भी करते हैं। जैसा कि उनके चिंतन और व्यवहार से लगता है कि वे एक स्वस्थ सामाजिक संरचना के पक्षधर हैं, इस दिशा में उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं। डॉक्टर अतुल कृष्ण जी के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष उनका राष्ट्र चिंतन है, भारत के गौरवशाली अतीत के प्रति परम आस्था और राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति सम्मान भाव उनके स्वाभाविक कर्म का आधार है। उनकी राष्ट्र शोध से राष्ट्र बोध की वैचारिक यात्रा उनको समाज और राष्ट्र में विशिष्ट बनाती है। उनकी लिखी इस अलौकिक पुस्तक राष्ट्र अनुभूति पर आधारित राष्ट्र चेतना कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियाँ मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत की संस्कृति, चरित्र क्या है, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, माता पिता का आदर और सम्मान किस प्रकार करें, शिक्षकों और गुरुओं संतों का सम्मान किस प्रकार करें, जीवन उपयोगी दैनिक व्यवहार क्या होता है, कार्य का सम्मान, व्यायाम, योग, ध्यान एवं शारीरिक साधना, यातायात के नियमों का पालन करना, पर्यावरण और प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल करें, मोबाइल का उपयोग और प्रयोग, नशे से किस प्रकार दूरी बनाई जा सकती है, नशे को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सनातन और सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान यानी जन गण मन, आजाद हिंद गान क्या है, जय हिंद का नारा क्या और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और इसका ज्ञान हर बच्चे को किस प्रकार होना चाहिए, सैनिकों और उनके परिजनों का परिवारों का सम्मान, स्वतंत्रता कैसे मिली, बिना लाठी बिना खड़ग बिना ढाल के नहीं मिली, कितने कोटि कोटि क्रांति वीरों ने अपना योगदान दिया, संयुक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 21 अक्टूबर की विशेषता क्या है, भारत का ध्वज क्या है, भारत का संविधान क्या है। तो राष्ट्र अनुभूति नाम की इस पुस्तक में इसके लेखक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने हर विषय को ले लिया है, यानी हर वो संस्कार जो हमारी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता मित्रों कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए, अपने बच्चों को वो सारे संस्कार कंट्रोल रूप में देना जिससे उसका भविष्य का निर्माण होगा। हर उस बात पर कंट्रोल एक माता पिता का होना चाहिए जो आपके बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है। पुस्तक हमको सिखाती है कि हमें अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार करना चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका नाम है राष्ट्र चेतना। आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस अलौकिक कार्यक्रम में। ये अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा, क्योंकि एक एक विषय हमारे बच्चों को संस्कार देने का काम करेगा। तो चलिए, फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और हमारा एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र चेतना में।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र।

0: भारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। भारत और भारत की संस्कृति, दोस्तों ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना, जिसका आधार है राष्ट्र अनुभूति। किताब के लेखक यानी परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमको समझाते हैं भारत और भारतीय संस्कृति के बारे में। भारत दो शब्दों का समुच्चय होता है, भा और रत, यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का अर्थ होता है लीन रहना। इस नाते भारत का अर्थ बनता है वो क्षेत्र जहाँ के निवासी सदा ज्ञान प्राप्ति में लीन रहते हैं, उस क्षेत्र को भारत कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भारत राष्ट्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति का वर्णन भी मिल जाता है। विष्णु पुराण में भारत वर्ष की भौगोलिक सीमाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसा भूखंड जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वही भारतवर्ष है। आर्यवर्त, अधिकांश प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए आर्यवर्त नाम का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं इसका आशय संपूर्ण भारत से लगाया गया है। के शताब्दियों तक भारत के लिए आर्यवर्त शब्द का प्रयोग ही होता रहा। आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष में कब और कैसे परिवर्तित हुआ, इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। जैसे एक मत के अनुसार ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारतवर्ष कहा गया। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर आर्यवर्त को भारत कहा गया। एक प्रसंग के अनुसार जिस क्षेत्र में राजा भरत की प्रजा रहती थी उस क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा। भारत एक अति प्राचीन राष्ट्र के साथ साथ विश्व का मार्गदर्शक भी रहा है। भारत के मूल चरित्र को जो भाव प्रभावित करते हैं उनमें प्राणी मात्र के प्रति अपनत्व भाव, सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति परम निष्ठा और जीवन की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना, प्रत्येक विचार को सम्मान देना, प्रगतिशील दृष्टि प्रमुख है। यदि दार्शनिक आधार पर भारत के मूल चरित्र को परिभाषित करें तो वो सत्यम शिवम सुंदरम के महासूत्र से निहित है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है और वही सुंदर भी है। स्वागत है आपका सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में।

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। ए सेठानी, नीर बुरन चलेगी आज ना जाऊंगा ना गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजान में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी, मैं चली जा।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ की

0: 2 0 8 6 5।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

इस प्रकार हूर मेनका विश्वामित्र के यहाँ ठहर जाती है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है। 10 महीने तक रुकी, वहां पर एक लड़की को जन्म दिया और उस लड़की को पहाड़ के ऊपर डाल के वह मेनका वापिस सुरपुरी चली जाती है। बताते हैं उस लड़की की रक्षा पक्षियों की, शकुन कहते हैं पक्षी को, तला माने लालन पालन करना, जिसकी पक्षियों ने रक्षा की हो ऐसी शकुन तला। तो वहां पर कुदरती कनव ऋषि शहर के लिए जा करते थे, स्नान के लिए जा करते थे, तो उसने उस लड़की को देखा और अपने डेरे में ले आए, उसका लालन पालन किया। इस तरह 15-16 साल बीत जाते हैं, वह लड़की शकुंतला जवान हो जाती है। एक बार की बात है कि राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के और वो सैर करते हुए शिकार खेलते हुए जंगल में आ जाते हैं और उस कनव ऋषि के डेरे में पहुंच जाते हैं। जब शकुंतला उसने दिखाई दी तो दूर से ही कामदेव का तीर लगता है और शकुंतला को राजा दुष्यंत क्या करते,

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और

0: जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल।

किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति फिर से आपका स्वागत करता हूँ।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आज इस खास कार्यक्रम में, स्मार्ट एनजीओ की इस खास प्रस्तुति में, हम बात करने वाले हैं आजकल में होने वाले बुखार, लगातार वायरल, ये सब क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथियों, आजकल मौसम में ना बदलाव हो रहे हैं, लोगों को बहुत तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, ठंड लगने जैसी शिकायतें हो रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कुछ समय बाद दूसरा भी उसी बुखार की चपेट में आ जाता है। जिस परिवार में किसी एक बच्चे या व्यक्ति को यह बुखार होता है, फिर पूरे परिवार को हो जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह बुखार किस वजह से हो सकता है? क्या हर बुखार एक जैसा होता है और क्या हम अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं? सबसे पहले एक जरूरी बात, हर बुखार डेंगू नहीं होता। हर बुखार को सिर्फ वायरल कहकर छोड़ देना भी सही नहीं होता। बुखार के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। मौसम और क्षेत्र के अनुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई तरह के वायरल और श्वसन संक्रमण भी बुखार का कारण बन सकते हैं। इसीलिए बुखार होने पर सबसे जरूरी है लक्षणों को समझना, जरूरत पड़ने पर समय पर जांच कराना। अब बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले, डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है। अचानक तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मिचलाना, शरीर पर दाने जैसे लक्षण हो जाते हैं। लेकिन डेंगू में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि खतरे के संकेतों को पहचानना सबसे जरूरी है। पेट में तेज दर्द हो, लगातार उल्टी हो, नाक या मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए, खून में उल्टी, मतलब खून की उल्टी होना शुरू हो जाए और काला मल आना शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा सुस्ती आनी शुरू हो जाए, बेचैनी हो, सांस लेने में परेशानी हो, मरीजों की हालत तेजी से बिगड़ रही हो, तो तुरंत आपको अस्पताल पहुंचना होगा।

0: जी हाँ, सेहत से ही लाभ के कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के कारण, लक्षण और उनसे बचाव का तरीका। सब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डेंगू क्या होता है, अब बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला रोग होता है। इसमें बुखार में जो है ठंड लगती है, कपकपी होती है, सिर दर्द, उल्टी, शरीर में कमजोरी होती है। कई बार इसके लक्षण दूसरी बीमारियों जैसे वायरल बुखार से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए केवल लक्षण के आधार पर खुद से बीमारी तय करना ठीक नहीं होता। और एक बीमारी होती है चिकनगुनिया। इसमें अचानक बुखार के साथ साथ जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर दाने भी हो जाते हैं और ये भी संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। सवाल है कि जब बीमारी अलग अलग है तो बचाव कैसे करें। पहला और सबसे बड़ा कदम, मच्छरों को पैदा होने ही मत दीजिए। साफ सफाई रखिए घर में, घर के आसपास पानी मत जमा होने दीजिए, गंदगी मत जमा होने दीजिए। कूलर, गमले, छत पर पड़े हुए पुराने टायर, डिब्बे या कोई ऐसी चीज जहां पानी भरा हुआ है वहां पर आप पानी मत भरने दीजिए। ये ऐसी ही जगहों पर पनपते हैं। नियमित रूप से सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, जहां रुका हुआ पानी वहां मच्छर के पनपने का खतरा रहता है और मच्छर ये दिन में भी काटते हैं। मच्छरों से बचने के लिए पूरे कपड़े पहनिए, जरूरत के अनुसार मच्छरदानी का उपयोग कीजिए और घर की खिड़की दरवाजों पर जाली का इस्तेमाल कीजिए। सोते समय मच्छरदानी उपयोग जरूरी है। चिकनगुनिया और डेंगू के फैलने वाले जो मच्छर होते हैं, जो ये काटते हैं ना, ये जो मच्छर होते हैं ये रात में नहीं दिन में भी काटते रहते हैं, तो आपके घर में मच्छर ना हो इसका इंतजाम आप कीजिए। अब एक और जरूरी बात, अगर घर में किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी बुखार हो रहा है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा।
1: स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

जी हाँ दोस्तों, यह है स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम बात कर रहे हैं आजकल होने वाले बुखार के बारे में, वायरल के बारे में, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया की बात मैंने आपको बताई। और मैं एक और बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि घर में अगर किसी को बुखार है और उसके बाद परिवार में एक से दूसरे को भी बुखार हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। कई संक्रामक रोग व्यक्ति से व्यक्ति तक फैल सकते हैं, जबकि डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर महत्वपूर्ण, मतलब आप समझे, चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया ये मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये व्यक्ति से व्यक्ति को फैल सकता है। इसीलिए बीमारी के फैलने का तरीका बीमारी के अनुसार अलग हो सकता है। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस में जुड़ी कोई समस्या आती है तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास सावधानी आपको रखनी है, मत जाइए उसके पास, या थोड़ी सी सावधानी रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखना है, जरूरत के अनुसार मास्क का भी उपयोग करना है। लगातार खांसी बन जाए, बुखार बन जाए, शरीर में दर्द बन जाए, डॉक्टर के पास जाइए, खून की जांच करवाइए। आजकल इतनी तरह के बुखार है पता नहीं चलता किसको कब कौन सा बुखार हो गया है, और अगर एक दूसरे से फैलना शुरू हो जाए तो आपने देखा होगा कि एक परिवार के सारे लोगों को हो जाता है। इसीलिए ये संक्रमण एक दूसरे से ना फैले इसका इंतजाम हमें तुरंत करना चाहिए।

आजकल होने वाले बुखार, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर, इन सब की बात कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सुबह भारती, आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है। यह खास प्रस्तुति सेहत सही लाभ कई, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। मैं हूं वास्तु कृष्णा। दोस्तों, जब भी बुखार हो, पहले तो अपने आप डॉक्टर मत बनिए, खुद से पैरासिटामोल या कोई और ऐसी दवाई जो आजकल दुनिया भर की आती है, ये सब खुद से मत खरीद कर खाइए। अगर एक दिन से ज्यादा बुखार को, बदन दर्द को, जुकाम, खांसी इत्यादि को हो गया है, डॉक्टर के पास तुरंत चले जाइए। जरूरत पड़ने पर अपने खून की जांच करवाइए, पता लगाइए कि बुखार कौन सा है, तभी उसका पूरा ट्रीटमेंट आप लेंगे। अगर बुखार के साथ खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी हुई कोई परेशानी है, तो संक्रमित व्यक्ति के आसपास आने जाने में सावधानी रखें, उनका तौलिया अलग करें, खांसने के टाइम पर उनको मास्क दीजिए, उनका कपड़ा अलग रखिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पूरे परिवार को ये फीवर हो सकता है। आपने देखा ही होगा, परिवार में किसी एक व्यक्ति को होता है, फिर पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है। बुखार में खुद एंटीबायोटिक या दूसरी दवाएं मत शुरू कीजिए। डेंगू की आशंका में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी एस्पिरिन या एनएसएआईडी की दवाई, ये जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, मेडिकल स्टोर से जाकर कुछ भी खरीद कर खा लेना, ये मत कीजिए। दुनिया भर की जो आजकल पैरासिटामोल या अन्य प्रकार की जो दवाइयां आती है, मत लीजिए खुद से, ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। बुखार को हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। बुखार तेज हो, लगातार हो, मरीज बहुत कमजोर हो रहा हो, पानी ना पी रहा हो, बार बार उल्टी हो रही हो, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी या असामान्य व्यवहार हो, खून आने जैसे लक्षण दिखाई दे, हालात तेजी से खराब हो रहे हो, तो तुरंत अस्पताल जाइए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं, अगर आपका मन है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन तुरंत जाइए। गंभीर मलेरिया में सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, दौरे, बहुत ज्यादा कमजोरी, पेशाब का कम होना जैसे गंभीर संकेत हो सकते हैं। बुखार अपने आप में बीमारी का नाम नहीं है दोस्तों, बुखार शरीर का एक संकेत है, असली कारण पता लगाना जरूरी है। यानी जो बुखार हमको होता है ना, वो कोई बीमारी नहीं, बुखार जिस वजह से हो रहा है उसका पता लगेगा जाके डॉक्टर के पास। इसीलिए इस मौसम में तीनों बातें हमेशा याद रखिए। पहला, मच्छर नहीं होने देना है पैदा। दूसरा, बुखार को नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा, खुद से दवाई लेने के बजाय जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और जांच तुरंत कराइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और इस संदेश को अपने परिवार, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि संचारी रोगों से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती, ये लड़ाई हमारे घर से, हमारी गली से और हमारी जागरूकता से शुरू होती है। घर साफ रखें, पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, सावधानी छोटी हो सकती है लेकिन उसका फायदा बहुत बड़ा हो सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं हूं वास्तु कृष्णा, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई, सुबह भारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कही। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, परिवार, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं।

प्रस्तुति। जी हाँ, सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती है। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ कई है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहां पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सीय सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी, और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें, उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सही जानकारी दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो जीवन के कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है सेहत से ही लाभ कई, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा

इसका अधिकार केवल आपका है। आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है। ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की। हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा वातावरण देंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच ना कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए। अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव बनेगा। इसी संदेश के साथ आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर सही सलाह के साथ लीजिए। सेहत से ही लाभ कई में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, वंदे मातरम।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए।

0: अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है। इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिए, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच की और इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो ममाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहाँ दोहराने जा रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत से ही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीवी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते, और अपना इलाज पूरा करें
0: जी।
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं
0: जी।
1: और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूँ कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत ही काम की जानकारियां आपने यहाँ पर हमारे श्रोताओं के लिए दी। मैं चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप सीधा सरकारी अस्पतालों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कार्यक्रम में सर ने भी अपना मोबाइल नंबर भी बताया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सुनते रहे सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो पर ये खास प्रस्तुति, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। अगर कोई और जानकारी टीबी रोग के बारे में आपको चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमारा नंबर है 9639012111। होगी आपसे फिर अगली कड़ी में मुलाकात। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हर बीमारी को जड़ से हटाना है ये संकल्प करके रहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, यह है सेहत से ही लाभ कही। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या के बारे में। परिवार नियोजन, अक्सर परिवार नियोजन का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चों की संख्या कम करना है, लेकिन वास्तव में परिवार नियोजन का उद्देश्य है पति पत्नी अपनी परिस्थितियों, स्वास्थ्य और भविष्य को ध्यान में रखते हुए मिलकर तय करें कि बच्चा कब होना चाहिए, बच्चों के बीच कितना अंतर रहना चाहिए और परिवार को किस तरह से बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के बीच उचित अंतर होगा तो माँ को अपने स्वास्थ्य को संभालने का सही समय मिलता है और परिवार को बच्चों के पोषण, टीकाकरण, पढ़ाई और देखभाल पर बेहतर ध्यान देने का अवसर भी मिलता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट एनजीओ और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं परिवार नियोजन यानी जनसंख्या के कंट्रोल के बारे में, जो कि केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, परिवार, पूरा परिवार जिम्मेदार होता है पति और पत्नी के साथ साथ। इसमें आइए शुरू करते हैं।

0: की प्रस्तुति।
1: जी हाँ, सेहत सही लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति में हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। आज हम बात कर रहे हैं जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। कहा जाता है, समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी केवल महिलाओं की होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पत्नी की जांच में साथ जाना, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखना, बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में सहयोग करना और परिवार नियोजन से जुड़े फैसले आपसी सहमति से लेना, ये सब परिवार की साझा जिम्मेदारियां होती है। आज परिवार नियोजन के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, लेकिन यहां जरूरी बात याद रखने की यह है कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। इसीलिए किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या सोशल मीडिया की अधूरी जानकारी के आधार पर इसे चुनने के बजाय एक अच्छे डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या जो अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, सरकारी अस्पतालों में होते हैं, जाकर उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। इसके अलग अलग तरीके आ गए हैं परिवार नियोजन को अपनाने के लिए। आप किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं हमें बता सकते हैं 9639012111 पर। एक और महत्वपूर्ण बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

जी हाँ, सेहत से ही लाभ गई है ये। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं इस खास प्रस्तुति को, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या कंट्रोल के बारे में। आपको पता ही है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो है, यानी जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, वो जनसंख्या विस्फोट ही है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको भीड़ मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसका कारण है यहां पर लगातार बढ़ रही जनसंख्या। बस हो, ऑटो हो, ट्रेन हो, फ्लाइट हो, मार्केट हो, कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह भीड़ नजर आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है परिवार नियोजन का अपनाना। भीड़ को कंट्रोल करना जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। समझा जाता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं की हो जाती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, ये साथ ही साथ पूरे परिवार की भी होती है। दोस्तों, परिवार नियोजन से जुड़े फैसले डर, दबाव या अफवाह के आधार पर नहीं होने चाहिए। आज भी कई जगहों पर गर्भ निरोधक साधनों को लेकर तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है कि कोपर्टी शरीर में घूम जाती है, कोई किसी गोली या इंजेक्शन को लेकर डरा रहता है, और पुरुष नसबंदी को लेकर भी कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी विषय में सबसे भरोसेमंद जानकारी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सीय सेवाओं से ही लेनी चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर के पास ही आपको हमेशा जाकर बात करनी चाहिए। दोस्तों, आज की चर्चा केवल परिवार नियोजन तक सीमित नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे युवाओं से भी जुड़ा है। युवा स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार और सही जानकारी मिलेगी और वे अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले पाएंगे, तो यही युवा देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। किशोरों और युवाओं के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी कई सरकारी सेवाएं और कार्यक्रम भी हैं, जिनके माध्यम से पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव स्वास्थ्य, जीवन कौशल और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर जानकारी और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए माता पिता और परिवार के लिए भी जरूरी है कि वे बच्चों, युवाओं और उनके सवालों को नजरअंदाज न करें। उन्हें डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय सही जानकारी दीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि सही जानकारी समय पर मिल जाए तो जीवन के कई गलत फैसलों से बचा जा सकता है।

एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यह है सेहत से ही लाभ कई, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सिर्फ आपके अपने सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। दोस्तों जब जब विश्व जनसंख्या दिवस आता है तब तब लोग बात करते हैं कि जनसंख्या कितनी ज्यादा हो गई है। मैं कहता हूं कि सिर्फ एक खास दिन इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए, हमें हमेशा इस बात का आभास होना चाहिए कि इस पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इस धरती की लगातार बढ़ रही जनसंख्या है। सबसे जरूरी हमारे देश की जनसंख्या, क्योंकि हमारे देश में जो संसाधन है वो कम है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जरूरत है इस वक्त सही जानकारियों की और जागरूकता की, हमें इस बात का आभास होने की कि जनसंख्या कंट्रोल या नियंत्रण करना कितना ज्यादा जरूरी है।

0: अधिकार केवल आपका है। आपको कितना ज्ञान है, आपको कितनी जरूरत है, आप कितने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकते हैं। एक बच्चे को जिसको हम जन्म देते हैं उसको एक अच्छा जीवन देने का अधिकार भी, जैसा बच्चे को अधिकार है ना एक अच्छा लाइफस्टाइल प्राप्त करने का, ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। हमारी वजह से कोई बच्चा अगर दुनिया में आता है तो उसको इस दुनिया की सबसे बेहतर सुविधाएं मिलना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए दोस्तों किसी भी सामाजिक दबाव में आकर बच्चे पैदा करना एकदम गलत है। ये अधिकार केवल आपका है, चाहे बच्चे पैदा करें या ना करें, ये केवल आपका अधिकार है। और एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, जैसे पहले कहा जाता था कि बच्चे दो ही अच्छे या शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी कम बच्चे हो या जैसे भी आपका सिस्टम है, आपके परिवार का सिस्टम है, ये केवल आपका अधिकार है। साथ ही साथ आपके अधिकार में भी ये बात ध्यान रखिए कि जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस नन्ही सी जान को आप इस दुनिया में लेकर आने वाले हैं उसको यहां पर क्या क्या मिलेगा। उसको मिलेगा यहां पर बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा पोल्यूशन, बहुत सारी भीड़। तो ये सब पता होना चाहिए कि अगर हम एक बच्चा पैदा करें, दो बच्चे पैदा करें, जनसंख्या कितनी बढ़ा देंगे, क्या हम उसे क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाएंगे। ये सारी बातों का ज्ञान होना भी हम सभी को बहुत जरूरी है। इसमें ना किसी को कभी कोई शर्म होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक दबाव होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है ज्ञान की। हमें पता होना चाहिए कि जिस बच्चे का जन्म होगा वो कैसे संसार में आएगा, हम उसे किस स्कूल में पढ़ाएंगे, कैसा भोजन देंगे, कैसा घर देंगे, कैसा वातावरण देंगे, ये सारी जिम्मेदारियां हमारी बन जाती है। दोस्तों बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े विषयों पर सही जानकारी देने में कभी संकोच ना कीजिए। परिवार नियोजन के बारे में हमेशा सबको बताइए। अपने छोटे बच्चों को भी लगातार बढ़ रही जनसंख्या के बारे में सचेत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ परिवार स्वस्थ समाज, और स्वस्थ समाज ही मजबूत भारत की नींव बनेगा। इसी संदेश के साथ आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सही जानकारी लीजिए और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी निर्णय सोच समझकर सही सलाह के साथ लीजिए। सेहत से ही लाभ कई में होगी फिर मुलाकात। जय हिंद, वंदे मातरम।
1: सेहत

0: मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों की

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज, और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में, या यूं कहूं ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में जिनका इतिहास जब जब हम पढ़ते हैं तो आंखें नम भी होती हैं और गर्व भी महसूस कराती हैं, दोनों चीजें एक साथ हो जाती हैं। मैं बात करने जा रहा हूं शहीद भगत सिंह जी के बारे में, जिनकी जयंती हर साल 28 सितंबर को मनाई जाती है। ये दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी भगत सिंह जी के जन्म का प्रतीक है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके क्रांतिकारी जीवन से जुड़ी बातें भी हम करेंगे। आप जाइए कहीं मत, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। शहीद भगत सिंह जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में बात करें तो भगत सिंह जी ने बहुत कम उम्र में ही भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने का बीड़ा उठाया। उनकी सोच सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो एक समाजवादी और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने साथियों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी भारत में देशभक्ति और क्रांति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक कर अपने विचारों को दुनिया के सामने रखकर ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। उनके बलिदान के बारे में हम आगे बात करेंगे। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। बातें चल रही हैं शहीद भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह जी को 23 साल की छोटी उम्र में 23 मार्च 1931 को उनके साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी। उनका ये बलिदान लाखों भारतीयों के लिए प्रेरणा बन गया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दे गया। उन्हें प्यार और सम्मान से शहीद ए आजम, महान शहीद भी कहा जाता है। उनके जयंती हमें याद दिलाती है कि आजादी आसानी से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया। ये दिन हमें उनके विचारों और बलिदानों को याद रखने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर देता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। बातें करना शुरू करेंगे विश्व रेबीज दिवस के बारे में। विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन रेबीज रोग की रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है। आप इस दिन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या रेबीज के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो जरूर आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। जुड़े रहिए और यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं विश्व रैबीज दिवस के महत्व के बारे में। ये दिन महान फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, जिनका निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। लुई पाश्चर ने ही पहली रैबीज वैक्सीन विकसित की थी। उनके इस योगदान ने लाखों लोगों की जान बचाई है। रैबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवरों जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ के काटने या खरोंच से फैलती है। ये बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और अगर समय पर इलाज न मिले तो ये लगभग 100% घातक होती है। तो इसीलिए कभी भी बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता, यहाँ तक कि बंदर भी अगर आपको बाइट कर ले, आपको काट ले, तो तुरंत इंजेक्शन लगवाएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। बातें चल रही हैं विश्व रेबीज दिवस के बारे में, जो हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसके मुख्य उद्देश्य समझ लेते हैं। तो देखिए, विश्व रेबीज दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि रेबीज 100% रोका जा सकता है। लेकिन ये संभव कैसे है? संभव ऐसे है, पालतू जानवरों खासकर कुत्तों का नियमित टीकाकरण करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट कोई भी पालतू जानवर आप पालते हैं तो उसका टीकाकरण जरूर कराएं समय पर। बाकी जागरूकता फैलाना, लोगों को ये सिखाना कि अगर कोई जानवर काट ले तो तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं और बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। ये दिन हमें याद दिलाता है कि रैबिट से मुक्त दुनिया बनाना संभव है। इस प्रयास में हर व्यक्ति और समुदाय का योगदान बेहद जरूरी है। एंड यस, आपका भी। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज और आप सुन रही हैं मुझे आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। एंड मेरा ये मानना है अगर आपके पास कोई अच्छी बात है, कोई हेल्थ टिप है, कोई जरूरी बात है तो उसे सबके साथ साझा करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास है कुछ हेल्थ टिप जो आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए, गाड़ी तो होगी ना आपके पास, गाड़ी नहीं होगी तो बाइक होगी, तो उनको चलाने के लिए हमें सही फ्यूल की जरूरत होती है। वैसे ही अब हमारी बॉडी की हम बात करें तो हमारी बॉडी को भी पोषण से भरपूर संतुलित आहार की जरूरत होती है। अब संतुलित आहार में क्या क्या आ सकता है उसके बारे में बात करें तो आप अपनी थाली में, जो भोजन की हमारी थाली होती है, उसमें हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें, साबुत अनाज और थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट्स जरूर शामिल करें। एंड मीठा, तला भुना और पैकेज फूड थोड़ा कम से कम खाएं। एंड एक बात ये समझनी भी जरूरी है, आप जैसा खाएंगे आप वैसे ही बनेंगे। तो अगर आपको हेल्दी रहना है

तो हेल्दी फूड तो खाना ही होगा, एंड इसके बाद आप दूसरा ऑप्शन चुनेंगे तो आपको भी पता है क्या होगा, है ना। इसके बाद अगली टिप के बारे में बात करें तो अगली टिप हमारी ये है कि भाई देखो, भागदौड़ भरी जिंदगी है और खुद को फिट रख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये ना भूलें कि शारीरिक गतिविधि भी बेहद जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट का व्यायाम एक्सरसाइज आप जरूर करें, और चाहे तो आप तेज चलना हो, सीढ़ियां चढ़ना हो या कोई खेल हो, ये भी आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। इससे आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा और अपने आप को आप थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। सो दो बड़े ही आसान से हेल्थ टिप मैंने आपके साथ साझा किए, आप इनको अपना कर हेल्दी रह सकते हैं और फिट रह सकते हैं। बाकी आपके पास भी कोई हेल्थ टिप है या दूसरी कोई बात है जो काम की है, वो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर

0: screening and diagnosis, all type of latest and advanced radiation therapy, all type of complex cancer surgery, hormonal therapy. To know more, call now 9639010313. द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता, बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए, अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और भाई देखिए, अपने शोज में तो मेरी यहां पर आपसे ढेर सारी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़कर कहीं और बात करना चाहते हैं तो वो जगह हो सकती है हमारे सोशल हैंडल्स। सो अभी तक अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं हुए हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर तो कनेक्ट हो जाइए। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको फेसबुक यानी कि मेटा पर भी मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पर भी चाहते हैं। यहां पर कनेक्ट होने से क्या होगा कि आप हमें कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव भेज पाएंगे, अपने पसंदीदा ट्रैक के लिए भी फरमाइश आप कर पाएंगे। सो जुड़ना क्यों नहीं है जब इतने सारे फायदे हैं। अभी जुड़िए और सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: किठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
1: किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड मेरठ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग,
1: निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: की प्रस्तुति।
1: जय हिंद, नमस्कार, आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है, इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जब प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा
1: नहीं,
0: देती है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी ट्रीटमेंट चलता है वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे, टीबी के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिये, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो ममाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत से ही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीबी के रोगी अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते और अपना इलाज पूरा करें
0: जी।
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं
0: जी।
1: और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया। और मैं समझता हूं कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद
0: सर, बहुत ही काम की जानकारियां आपने यहां पर हमारे श्रोताओं के लिए दी। मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप सीधा सरकारी अस्पतालों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कार्यक्रम में सर ने भी अपना मोबाइल नंबर भी बताया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सुनते रहे सुबह आजाद हिंद रेडियो पर ये खास प्रस्तुति, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। अगर कोई और जानकारी टीबी रोग के बारे में आपको चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमारा नंबर है 9639012111। होगी आपसे फिर अगली कड़ी में मुलाकात। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। हर बीमारी को जड़ से हटाना है ये संकल्प करके रहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।